प्रेम से बोलो श्री देवी माता की जय. विद दिस इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी ब्यूटीफुली डन बाय आवर वेरी ओन ब्रायन मोहन, द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप एंड ऑल. एट दिस पॉइंट इन टाइम हवन हैव बीन कंप्लीटेड. सब खड़ा हो जाए आरती के लिए. लेट अस ऑल स्टैंड एज वी टेक पार्ट इन आवर कंक्लूडिंग श्री देवी आरती.

भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र दुख हारिणी सता विभूत कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी।

गदाधरी शिवा शिवा प्रदायिनी वरा वरानना सुभा भजामि विंध्यवासिनी ऋषिन्द्र जामिनी प्रदभिधा स्वरूप धारिणी जले थले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Parampara is our tradition. Parampara is our heritage. Parampara is about inspiring music as your day unfolds. Join Dave Ramsuchit on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, 5 to 7am for Parampara on Radio Jagriti 102.7 FM, A New Awakening.

0: संग।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

क्या दशा की प्रभु रामचंद्र की, दुष्ट रावण में सीता मैया को हर न कर ले। अब काऊ बता करेंगे सीता मैया को, हाँ राम भक्त हनुमान थे, वो ही समुंदर राम कर पाएंगे।

हरि ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते